0: Hello and welcome to a new week here on Beyond World of Sport with me, Vidur Kathuria. Plenty of action to get you over the course of the show today. First up, it's the headlines. European, Asian and North American football confederations issue a joint statement accusing FIFA President Gianni Infantino of breaking trust through deception. Jose Mourinho reveals that he had agreed a deal to replace Alex Ferguson at Manchester United in 2013, but eventually made a U-turn to join Chelsea that same year. A consortium which includes Amazon founder Jeff Bezos is reportedly closing in on a deal to buy a stake in Premier League giants Liverpool.
1: मतलब भाई साहब आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोल्स आउट अ ग्रैंड वेलकम फॉर इंडियाज कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट एट हिज रेजिडेंस एंड इंटरैक्ट्स विद इंडियाज एथलीट्स आफ्टर द सक्सेस इन ग्लासगो

0: But the situation got all the more tense when the students reportedly moved closer to the assembly as they tried to break through the police barricades. In response, the police used water cannons to disperse the crowd, but this seemed to have little impact on the protesters, who were seen dancing after being sprayed upon with water. Visuals showed utter chaos at the spot. The police also resorted to lathi charge.
1: बैरिकेटिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। यह सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है।
0: Visuals showed how the students were tear gassed by the police as well. Take a look.
2: प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
0: Under fire from the BJP, which rules at the center over the Jharkhand government.